0: 7.6
1: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
2: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
3: यति बेला बिहानको ठिक 9 बज्यो।

0: 7.6
1: Shukla Gandaki FM 97.6
2: Shukla Gandaki Time Check.
3: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।